कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन नन नन नन गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर, चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहां थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम रमक झुम झुम, चमक झुम झुम

0: सानन सानन पावन चले झनन झनन झांझर बोले अमृत घोले दिल न डोले कामिनिया चले हौले हौले नयन झुके पग न रुके बेला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन गोरी चले छुम छुम छुम छमक छमक रुम झुम झुम झमक झमक छुम छुम छुम छमक छमक
1: सनन

शोर गिरे बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पपीहा पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपीहा सन में लगन लगी मन में अगन जगी बंद किए दोना नैना उभारे प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे चली है वो सांसों की डोर सहारे छो

नदिया पहाड़ कर पार गोरी नार आई प्रीतम के द्वार अभिसार करने। भइयों में बांध अपने प्रीतम की साध लगी प्राणों में अमृत सा प्यार भरने।

अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकरी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सारा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हरी भोली।

0: क्या है चित चोर?
1: वन टू थ्री फोर
0: क्या है चित चोर?
1: यू सिंग लाइक किशोर बट शादी का डे
0: ओ यस सितंबर 8
1: वेरी लेट
0: डार्लिंग वेट

0: सच है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल
0: सच है बिल्कुल। यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए लग जा गले दुनिया जले।
0: कम
1: छम छम छम छम छम छम छम ए गर्ल हम तो